आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। दश टनमितं मानवीय सहायेन सह तृतीयं विमानयानं काठमाण्डुनगरं प्रति प्रस्थितम्। आकस्मिक जल

0: आज देश में हर एक सेकंड में होते हैं 1 करोड़ रुपए के यूपीआई पेमेंट और हैं 81 करोड़ से ज्यादा यूपीआई पेमेंट पॉइंट्स।
1: स्ट्रीट वेंडर से लेकर आपकी गाड़ी के शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट सिर्फ एक क्यूआर कोड स्कैन करके हो जाती है।
0: यूपीआई के 10 साल डिजिटल आत्मनिर्भर बेफिक्र।
2: मेरी बैंक हमेशा मेरे साथ चलती है। सुबह उठती हूँ तो पैसे जमा कराती है, कस्टमर ज्यादा हो जाते हैं तो पूरा गल्ला संभाल लेती है, आधी रात को भी उठा के बताती है कि मैडम लक्ष्मी फल भंडार का पेमेंट आ गया है। जनधन बैंक खाता क्या मिला मुझे तो उंगलियों के छोर पर बीमा पेंशन डीबीटी

0: सारी बैंकिंग सुविधाएं मिल गई हैं।
1: 12 साल में 59 करोड़ जनधन खाते खुले, जिसमें 56% खाते तो सिर्फ महिलाओं के हैं। पीएम जनधन योजना के 12 साल, ज्यादा बचत, ज्यादा काम।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए आज से 4 दिन की उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की यात्रा पर। भारत ने अमेरिका से जैवलिन टैंक रोधी मिसाइल प्रणाली खरीदने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। नेपाल बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 589, 1924 लोग अब भी लापता। भारत पड़ोसी देश को मानवीय सहायता बढ़ा रहा है। सरकार चीनी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सितंबर से पखवाड़े के आधार पर चीनी आवंटन प्रणाली शुरू करेगी। और भारत के वेलवन सेंट्रल कुमार ने हंगरी के बालाज फारकश को हराकर पीएसए बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन का खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए आज से 4 दिन की उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की यात्रा पर रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद जा रहे हैं। ये प्रधानमंत्री की उज्बेकिस्तान की चौथी यात्रा है। श्री मोदी यात्रा के दौरान भारत और उज्बेकिस्तान के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे।
3: इस यात्रा के दौरान दोनों नेता ताशकंद में द्विपक्षीय महत्व के सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भारत उज्बेकिस्तान के शीर्ष 10 व्यापारिक साझेदारों में से एक है, जिनके बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग $1 अरब का है। पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच कारोबार तेजी से बढ़ा है। चिकित्सा, खनन और रक्षा कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जिनमें सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। रक्षा क्षेत्र में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच व्यापक सहयोग की शुरुआत हो चुकी है। 2019 में रक्षा मामलों पर एक संयुक्त कार्य समूह की स्थापना की गई थी। भारत और उज्बेकिस्तान नियमित रूप से संयुक्त सैन्य अभ्यास दोस्तलिक में हिस्सा लेते हैं और इसका 7वां संस्करण अप्रैल 2026 में उज्बेकिस्तान में आयोजित किया गया था। इन सभी क्षेत्रों के लिहाज से प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा अत्यंत महत्वपूर्ण है और इससे दोनों देशों के बीच रणनीतिक और व्यापारिक साझेदारी को और मजबूत करने की नींव रखी जाएगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
2: उज्बेकिस्तान में भारत की राजदूत स्मिता पंत ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध तेजी से मजबूत हो रहे हैं और प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान सभी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी।
4: रिलेशनशिप ऑलरेडी बहुत अपवर्ड ट्रैजेक्टरी में है। 2011 में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोर्ज हुई थी, उसके बाद 2015 में प्रधानमंत्री जी का पहला दौरा हुआ था। 2026 तक बहुत सारे एरियाज में हम लोग फॉरवर्ड मूवमेंट कर चुके हैं, चाहे आप ट्रेड की बात करें, इन्वेस्टमेंट की बात करें, डेवलपमेंट कोऑपरेशन की बात करें, डिफेंस कोऑपरेशन की बात करें। ट्रेड में ही करीबन 300% इंक्रीज हुई है 2015 से।
2: भारत ने अमेरिका के साथ जेवलिन टैंक रोधी मिसाइल प्रणाली की खरीद के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों देश भारत में इसके संयुक्त उत्पादन की दिशा में काम कर रहे हैं। भारत में अमेरिकी दूतावास और वाणिज्य दूतावास ने कहा है कि भारतीय सेना ने जेवलिन की खरीद के लिए प्रस्ताव और स्वीकृति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत में अमरीका के राजदूत सर्जियो गो ने कहा कि ये समझौता भारतीय सेना के लिए अमरीकी समर्थन दर्शाता है। नेपाल और तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 589 हो गई है। 1924 लोग अब भी लापता हैं, जबकि 101 घायल लोगों का अस्पतालों में उपचार चल रहा है। लापता लोगों में पनबिजली परियोजनाओं से जुड़े लोग, विदेशी नागरिक, आम नागरिक और सुरक्षा तथा सरकारी कर्मी शामिल हैं। भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल को मानवीय सहायता तेज कर दी है। मानवीय सहायता सामग्री के साथ तीसरा विमान कल शाम काठमांडू पहुंचा।
5: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बताया कि सहायता सामग्री में पोर्टेबल जनरेटर, खाद्य सामग्री और जल शोधन की गोलियां शामिल हैं। डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि बचाव अभियान के लिए चिकित्सकों, पैरामेडिक्स और रेकी टीम सहित 11 सदस्यीय दल भी मौके पर मौजूद है। उन्होंने नेपाल में राहत और बचाव कार्यों के लिए भारत का समर्थन दोहराया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि नेपाल बाढ़ के बाद से 320 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो सका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि लगभग 100 भारतीय मूल के लोग भी लापता हैं। नई दिल्ली में कल श्री जायसवाल ने कहा कि त्रिशूली, वन जल विद्युत परियोजना में लगे 63 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। तमिलनाडु के 21 भारतीय नागरिक काठमांडू से कल नई दिल्ली पहुंचे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में कल इन 21 तीर्थयात्रियों से मुलाकात की। उन्होंने बचाव प्रयासों के लिए नेपाल सरकार और सेना को धन्यवाद दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जायसवाल ने बताया कि चीन की ओर लगभग 400 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और अपने परिवारों के संपर्क में हैं। श्री जायसवाल ने कहा कि सरकार ने विदेश मंत्रालय में 2400 घंटे कार्यरत एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। उन्होंने कहा कि काठमांडू और पेचिंग में भारतीय दूतावासों ने भी 24 घंटे कार्यरत हेल्पलाइन शुरू की है। समाचार कक्ष से मैं चंद्रशेखर शर्मा।
2: विदेश मंत्रालय के नियंत्रण कक्ष के टेलीफोन नंबर हैं 0112308-8718, 0112308-8719। आप व्हाट्सएप नंबर 996829188 और ईमेल situationroom@mea.gov.in के जरिए भी संपर्क कर सकते हैं। विदेश मंत्रालय काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास के आपातकालीन संपर्क नंबर 9779851316807 पर संपर्क कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने विदेश मंत्रालय से नेपाल में आई बाढ़ में लापता राज्य के लोगों की तलाश के लिए एक प्रतिनिधिमंडल भेजने की अनुमति मांगी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि अनुमति मिलते ही एक प्रतिनिधिमंडल काठमांडू भेजा जाएगा। इसमें राज्य के एक मंत्री, एक विधायक, महानिरीक्षक स्तर के पुलिस अधिकारी और भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। नेपाल बाढ़ से सुरक्षित बचे 21 पर्यटक कल रात चेन्नई पहुंच गए। पर्यटकों ने सुरक्षित चेन्नई वापसी के लिए केंद्र और राज्य सरकारों का आभार व्यक्त किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
6: आपको हर खबर से रखे अपडेट एक्सपर्ट @AIR News Hindi और पब्लिक पर @AIR News Alerts को फॉलो करें।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने चीनी की समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा मासिक कोटा प्रणाली के स्थान पर अगले महीने से पखवाड़े के आधार पर चीनी आवंटन प्रणाली शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत चीनी मिलों को पहले सप्ताह में कम से कम 40% आवंटन और शेष मात्रा अगले सप्ताह में बेचनी होगी।
7: सरकार ने कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है और उचित मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि हाल के दिनों में चीनी मिलों से बाहर चीनी की कीमतों में लगभग 20% की गिरावट आई है, जबकि खुदरा चीनी की कीमतें भी कम होने लगी हैं। नए सीजन के लिए गन्ने की पेराई 15 अक्टूबर से शुरू होगी और इस दौरान 10 लाख टन से अधिक चीनी के उत्पादन का अनुमान है। सरकार ने चीनी मिलों को अक्टूबर में उत्पादित चीनी को बिना किसी प्रतिबंध के बेचने की अनुमति दे दी है। इससे ये सुनिश्चित हो सकेगा कि नए सीजन का उत्पादन शीघ्र घरेलू बाजार में उपलब्ध हो सके। नवंबर में चीनी उत्पादन लगभग 45 लाख टन रहने की संभावना है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
2: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में सीएनजी के मूल्य में 3.89 रुपए प्रति किलोग्राम की वृद्धि की गई है। इसके साथ ही राष्ट्रीय राजधानी में सीएनजी की कीमत 86.98 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। संशोधित सीएनजी कीमतें आज सुबह 6 बजे से लागू हो गई हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज तमिलनाडु, कर्नाटक, केरलम और लक्षद्वीप के 3 दिन के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान वे शिक्षा, सार्वजनिक सेवा, सांस्कृतिक विरासत, उद्योग, अकादमिक सहयोग, मत्स्य पालन को बढ़ावा देने से संबंधित कार्यक्रमों के अलावा कुछ प्रमुख सार्वजनिक समारोह में भी भाग लेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 6 दिन की अमरीका यात्रा पर हैं, जहां वे G20 वित्त मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगी और निवेश के अवसरों पर मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं से बातचीत करेंगी। श्रीमती सीतारामन बृहस्पतिवार को कनाडा के 3 दिन के दौरे के बाद शिकागो पहुंची, जहां उन्होंने भारत कनाडा आर्थिक और वित्तीय संवाद किया था।
8: वित्त मंत्री शिकागो में प्रमुख निवेशकों के साथ गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगी और निजी क्षेत्र की प्रमुख कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, अध्यक्षों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगी। इन बैठकों में भारत में निवेश के अवसर, आर्थिक दृष्टिकोण और भारत अमेरिका व्यापार तथा निवेश साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होगी। श्रीमती सीतारामन शिकागो विश्वविद्यालय के पोल्सकी सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन का दौरा करेंगी। वित्त मंत्री अपनी यात्रा के दौरान शिकागो में भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी बातचीत करेंगी। एशविले में सुश्री सीतारामन की अध्यक्षता में आयोजित G20 सदस्य देशों के वित्त मंत्री, केंद्रीय बैंक गवर्नर तथा वरिष्ठ आर्थिक अधिकारी वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। ये बैठक 31 अगस्त और 1 सितंबर को होगी। समाचार कक्ष से मैं वीरेंद्र कौशिक।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 137वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। मौसम विभाग ने बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल में गंगा किनारे वाले क्षेत्र, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में भी कल तक तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने उड़ीसा के कई जिलों के लिए तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। भारत के वेलवन सेंथिल कुमार ने PSA बुडापेस्ट स्क्वैश ओपन का खिताब जीत लिया है। फाइनल में कल सेंथिल ने हंगरी के बालाज फारकश को लगातार गेम में 3-0 से हराकर यह ऐतिहासिक जीत दर्ज की। सेंथिल कुमार ने बालाज फारकश को 11-4, 11-2, 11-3 से हराकर ट्रॉफी जीती। क्वार्टर फाइनल में उन्होंने विश्व में 18वीं वरीयता प्राप्त और एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता NYOVNG को 3-0 से हराया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: हर खबर से जुड़े रहिए, जहां भी हों, expert@airnewshindi को फॉलो करें।
2: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
9: धन्यवाद फरहत। विनाशकारी जल प्रलय से जूझ रहे नेपाल की त्रासदी की तस्वीरें सभी समाचार पत्रों ने सचित्र दी हैं। राजस्थान पत्रिका लिखता है, पल पर प्रलय का खौफ, झील टूटी तो घर छोड़कर पहाड़ों पर भागे लोग। जनसत्ता ने त्रिशूली में नेपाली सेना द्वारा लोगों को बचाए जाने की तस्वीरें दी हैं। पत्र लिखता है, अब भी 320 भारतीय लापता। चीन में फंसे 400 लोग सुरक्षित। नवभारत टाइम्स ने नेपाल में सैलाब शीर्षक से बचाव अभियान पर लिखा है, चुनौतियों के बीच अब जिंदगी बचाने की जंग। अमेरिका से 100 जेवलिन मिसाइलें खरीदेगा भारत, अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर ने दी जानकारी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, हिंदुस्तान ने रक्षाबंधन के अवसर पर बच्चों द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राखी बांधने की तस्वीर साझा की है। पत्र लिखता है, पीएम मोदी की कलाई पर सजा बच्चों के प्यार का धागा। नशे के खिलाफ एकजुट हो रही देहरादून के थानी गांव की महिलाएं, नशे के कारोबार से गांव को बचाना है लक्ष्य, जनसत्ता की सुर्खी है। सोना 26 साल बाद सबसे बड़े मासिक उछाल की तरफ, अगस्त में दाम 14% बढ़ चुके, दैनिक भास्कर की खबर है। अमर उजाला ने अपने कारोबारी पन्ने पर शेयर बाजार से जुड़ी खबर प्रकाशित की है, IT शेयरों ने दिया बाजार को सहारा, सेंसेक्स निफ्टी में 2 दिन की गिरावट थमी। शिक्षा की दीवार से आसान हो रही पढ़ाई, सरकारी स्कूल में नवाचार, निजी स्कूलों से हटा सरकारी में कराया प्रवेश, मध्य प्रदेश के सीहोर में इस योजना के माध्यम से अंग्रेजी सीखने के सरल तरीके को अपनाया जा रहा है, राजस्थान पत्रिका की खबर है।
2: धन्यवाद नवीन। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए आज से 4 दिन की उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की यात्रा पर। भारत ने अमेरिका से जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम खरीदने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। नेपाल बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 589 हुई, 1924 लोग अब भी लापता। भारत पड़ोसी देश को मानवीय सहायता बढ़ा रहा है। सरकार चीनी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 1 सितंबर से पखवाड़े के आधार पर चीनी आवंटन प्रणाली शुरू करेगी। और भारत के वेलवन सेंथिल कुमार ने हंगरी के बालाज फारकश को हराकर PSA बुडापेस्ट स्क्वैश ओपन का खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
10: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to embark on a 4-day visit to Uzbekistan and Kyrgyz Republic beginning today to enhance economic and defense cooperation. India signs deal with United States to procure Javelin anti-tank guided missile systems. Death toll in Nepal flash floods rises to 579, while 1,924 people still missing. India steps up humanitarian assistance to the neighboring country. Government to introduce fortnightly sugar allocation system from next month to ensure availability of sugar in market on time. And India's Vilavan Senthil Kumar wins PSA Budapest Swash Open title, beating Balázs Farkas of Hungary. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will embark on a four-day visit to Uzbekistan and Kyrgyz Republic beginning today. On the first leg of his two-day visit, he will reach Uzbekistan. He will visit Tashkent at the invitation of the President of Uzbekistan, Mr. Shavkat Mirziyoyev. This will be Mr. Modi's fourth visit to Uzbekistan. The Prime Minister's office in a statement said, during his visit, he will hold delegation-level talks with President Mirziyoyev to further strengthen the strategic partnership between India and Uzbekistan. Our correspondent has the details.
3: During the visit, both leaders will have discussions on the entire gamut of issues of bilateral importance in Tashkent. India is among top 10 trade partners of Uzbekistan with bilateral trade of around 1 billion, which is the result of the manifold increase of the trade in last few years. Medical, mining and defense are few of the important sectors in which there is a lot of potential for cooperation. India has long-standing and wide-ranging cooperation with Uzbekistan in the field of defense. A joint working group on defense was established in 2019. India and Uzbekistan regularly participate in joint military exercises, Dostlik, and the seventh edition of this exercise was conducted in Uzbekistan in April 2026. In view of this, the visit of PM Modi becomes very important and is expected to lay the foundation for further cementing strategic and business partnership between both countries. Sushil Chandra Tiwari, Akashwani News, Tashkent.
10: On the second leg of his visit, the Prime Minister will travel to Bishkek on a two-day visit to participate in the 26th Shanghai Cooperation Organization SCO Summit at the invitation of the President of Kyrgyz Republic, Sadur Japarov. The summit marks the 25th anniversary of the SCO, of which India has been a full member since 2017. In a special conversation with Akashwani News, India's ambassador to Uzbekistan, Smita Pant, said the relations between the two countries are strengthening rapidly, and during the Prime Minister's visit, there will be discussion on increasing cooperation in all areas. She said the business between two countries has increased manifold in last few years, and during the Prime Minister's visit, both countries will discuss to improve connectivity and reduce the bottlenecks.
4: Despite connectivity bottlenecks, India and Uzbekistan are natural markets. We can do more. We can sell equipment, machinery, textile machinery, chemical, dyes, surgical equipment. को हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं हम उनसे ज्यादा इंपोर्ट भी कर सकते हैं बिकॉज ये रिसोर्स रिच नेशन है स्टंबलिंग ब्लॉक जो है वो है कनेक्टिविटी तो इसको लेके दोनों लीडर्स बात करेंगे देखेंगे कि क्या किया जा सकता है
10: इंडिया हैज साइंड अ डील विद द यूएस फॉर द एक्विजिशन ऑफ जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम्स फॉर द इंडियन आर्मी This marks India's formal entry as a customer of the famed shoulder-fired weapon, even as both countries work towards its eventual joint production in India. The U.S. Embassy and consulates in India, in a statement yesterday, said the Indian Army had signed a letter of offer and acceptance for the purchase of the Javelin. The embassy also said that the United States welcomes the Indian Army signing of a letter of offer and acceptance for the purchase of the Javelin. U.S. Ambassador to India Sergio Gore said the agreement demonstrated the depth of American support for the Indian Army and created new opportunities for our defense industries to work together. The death toll from devastating flash floods in Nepal and Tibet has risen to 579, with 1,924 people still missing. According to the data released by the Nepal's National Disaster Risk Reduction and Management Authority, 579 bodies have been recovered so far, while 101 injured people are undergoing treatment in hospitals. The missing figure of 1,924 includes people from hydropower projects, foreign nationals, civilians and security and government personnel. As many as 933 people from hydroelectric projects are reported missing, while 517 foreign nationals remain unaccounted for. Meanwhile, India has stepped up humanitarian assistance to Nepal, affected by flash floods. As the third flight carrying 10 tons of humanitarian assistance has departed for Kathmandu last evening. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar yesterday told the media that India is supporting Nepal in the ongoing relief and rescue efforts.
11: They told me about exactly what happened to them, how the floods came, and they were very thankful, particularly to the Nepal army, which made this great effort to get them out of that very difficult place where they were. So right now, our effort is on supporting Nepal in the relief, in the rescue of people. Even spoke to the Nepal foreign minister. We have given them a range of support offers.
10: The Ministry of External Affairs has said that 320 Indian nationals remain uncontactable or are reportedly missing following the flash flood tragedy on Wednesday. Prime Minister Narendra Modi will share his thoughts with the people of the country and abroad in the Mann Ki Baat program on Akashwani tomorrow at 11 a.m. It will be the 137th episode of the monthly radio program. The program will be broadcast across the entire Akashwani and Doordarshan network, the AIR News website and the news on AIR mobile app. It will also be live streamed on the YouTube channels of AIR News, DD News, the PMO and the Ministry of Information and Broadcasting. Akashwani will broadcast the program in regional languages immediately after the Hindi broadcast. This is Akashwani giving you the news.
6: Stay in the know wherever you are. Follow us on X and Threads at AIR News Alerts.
10: The government has said that there is no shortage of sugar in the country and all necessary measures will be taken for adequate availability of sugar at reasonable prices. Consumer Affairs Ministry said that ex-mill sugar prices have declined by around 20% in recent days, while retail sugar prices have also started coming down. The ministry said it has taken a series of proactive measures to ensure adequate availability of sugar and prevent artificial tightening of supplies in the domestic market. The government has been closely monitoring sugar prices, stocks and movement across the country. It has decided to introduce a fortnightly sugar allocation system from next month, replacing the existing monthly quota system to ensure that sugar reaches the market in a timely manner. Our correspondent has filed this report.
12: Under the fortnightly quota, sugar mills will be required to sell at least 40% of the allocation in the first week and remaining quantity in the succeeding week. The ministry said sugar cane crushing for the new season will commence from 15th of October and it is expected that more than 10 lakh tons of sugar will be produced during the month. The government has also permitted sugar mills to sell sugar produced during October without restriction, ensuring that new season production becomes available in the domestic market at the earliest. Sugar production is expected to be around 45 lakh tons in November, providing substantial additional supply for domestic consumption. With Dipendra, this is Anand Kumar for Akashwani News, Delhi.
10: Union Agriculture, Farmers Welfare and Rural Development Minister Shivraj Singh Chauhan said that India cannot become a Viksit Bharat without a Viksit Punjab. He assured the farmers of Punjab that the central government would not compromise with their interests. Addressing farmers and others at Baba Bakala in Amritsar district during the Rakhad Punya program yesterday, Mr. Chauhan said every agreement signed with any country will be done by keeping their welfare in mind first. Mr. Chauhan said that under the leadership of the Prime Minister, Punjab has received central support of more than 8,20,000 crore rupees under various schemes. He said that 1,331 crore rupees have been given this year under the Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Ji Ramji Yojana.
13: The Viksit Bharat Ji Ramji Yojana has been designed as a comprehensive scheme for the development of villages. Under this scheme, we have already provided 1,331 crore rupees to Punjab this year, and if there is further need, we will provide more funds as well.
10: The compressed natural gas CNG price has been hiked by 3 rupees 89 paise per kilogram in Delhi NCR. With today's price hike, CNG in the national capital now costs 86 rupees 98 paise per kilogram. The revised CNG price came into effect this morning. The National Testing Agency, NTA, has declared the results of the UGC NET June 2026 examination for 84 subjects. more than 4,000 candidates have qualified for the Junior Research Fellowship. Telangana Deputy Chief Minister Bhatti Vikramarka has directed the Singareni officials to explore a joint venture with Karnataka's Hatti Gold Mines for future gold mining projects. He gave this instruction during a visit to the Hatti and UTI gold mines in Raichur district in Karnataka on the second day of his tour to the region. Mr. Vikramarka, who also holds the finance and energy portfolio, said, combining the technical expertise of both public sector companies could improve India's domestic gold production. A fresh spell of heavy rain is set to continue across Odisha as a low-pressure area is likely to form over the northwest Bay of Bengal today. The IMD has issued orange warnings for several districts with rainfall activity expected to intensify further tomorrow. A report.
14: In Odisha, the India Meteorological Department, IMD, says an upper air cyclonic circulation over the North Bay of Bengal and adjoining West Bengal, Bangladesh coast is likely to trigger formation of a low-pressure area over the Northwest Bay of Bengal and adjoining North Odisha coast around today. Orange warning has been issued for Baleswar, Keonjhar and Mayurbhanj districts till this morning, with heavy to very heavy rain likely to isolated places. On Sunday, six districts, Baleswar, Bhadrak, Jagatsinghpur, Keonjhar, Kendrapada and Mayurbhanj are under orange warning. Prakash Das for Akashwani News, Bhubaneswar.
10: And in sports, India's Willavan Senthilkumar won the PSA Budapest Squash Open title in Hungary after defeating home favourite Balázs Farkas 3-0 in the final. He had an impressive run to the title, beating world number 18 and Asian Games gold medalist Yao Yao Ing 3-0 in the quarterfinals before overcoming fellow Indian Veer Chotarani 3-2 in a thrilling semi-final. Senthilkumar capped his remarkable week with a dominant performance in the final. Vice President C.P. Radhakrishnan has extended his greetings on the occasion of National Sports Day today. In a social media post, Mr. Radhakrishnan paid tribute to Indian hockey legend Major Dhyanchand and said that the spirit of determination, discipline and excellence defines Bharat's sporting culture. He noted that the nation's growing sports ecosystem reflects the commitment to nurturing talent at every level. And now for a look at today's newspapers, it's over to Sarabjit Kaur.
2: Thank you, Anuja. The rising number of missing people in Nepal flash flood disaster captures the headlines in all the dailies today. India mounts a major tracing and relief operation while Nepal allows foreign experts to join search operation, writes the Pioneer. As New Delhi pushes for reform of global institutions including UN, IMF and World Bank, a headline in the Economic Times says BRICS set to adopt framework for supply chain cooperation. The Times of India headline states, junk food will soon have labels warning of high salt, sugar and fat with red hexagonal warnings on the front of food packages. India signs javelin procurement deal with US, boosts defense cooperation, writes the Hindu. And finally, after Norway crown, Pragananda overcomes odds to become first Indian to win the coveted Grand Chess Tour, writes Hindustan Times and all the other dailies. And with that, it's back to you, Anuja.
10: Thank you, Sarabjit. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to embark on a four-day visit to Uzbekistan and Kyrgyz Republic beginning today to enhance economic and defense cooperation. India signs deal with United States to procure Javelin anti-tank guided missile systems. Death toll in Nepal flash floods rises to 579, while 1,924 people still missing. India steps up humanitarian assistance to neighboring country. Government to introduce fortnightly sugar allocation system from next month to ensure availability of sugar in market on time. And India's Willavan Senthilkumar wins PSA Budapest Squash Open title, beating Balázs Farkas of Hungary. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
15: ಸಮಯ 8:30 ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೀಗ ಆರಂಭ. ಆಕಾಶವಾಣಿ
16: ಆಯುಷ್ವಾಣಿ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯುರ್ವೇದ, ಯೋಗ, ಪ್ರಕೃತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಯುನಾನಿ, ಸಿದ್ಧ ಹಾಗೂ ಸೌರಿಪ, ಹೋಮಿಯೋಪತಿ, ಈ ಸಮಗ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಪದ್ಧತಿಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಸರಣಿ ಆಯುಷ್ವಾಣಿ.
17: ಕೇಳುಗರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜಶೇಖರ್ ಚ ಹೊಸಮನಿ, ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ, ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬ್ಯಾಡಗಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾವೇರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಇಂದು ತಮಗೆಲ್ಲ ಸಂಧಿವಾತ ಅಥವಾ ಅರ್ಥೈಟಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇರೋ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾವು ಏಕೆ ಸಂಧಿವಾತ ಅಥವಾ ಅರ್ಥೈಟಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಯಾಕೆ ಉಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ, ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಫಾರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರುಮಟಾಯ್ಡ್ ಅರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಮತ್ತು ಅದರ್ ಅರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಸಮಿತಿಯ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ 20% ಅಂದರೆ 15 ಕೋಟಿ ಜನ ಸಂಧಿವಾತದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆದಾಯ ತರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ವಯಸ್ಸಿನ 15-49 ವಯಸ್ಸಿನ ಗುಂಪಿನವರು ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ಬರಲಿರುವ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಧಿವಾತ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಅಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಅಂದರೆ ಎನ್ಸಿಡಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮೀರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇನ್ನು ಈ ಸಂಧಿವಾತದಿಂದ ಬಳಲುವ ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದ ಮಟ್ಟ, ಜೀವಿತಾವಧಿ ಮತ್ತು ಆತನ ದುಡಿಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕೂಡ ಕುಂಠಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಂಧಿವಾತವನ್ನು ಉಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡದೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡಿಬೇಕು. ಇನ್ನು ಈ ಸಂಧಿವಾತ ಅಥವಾ ಅರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಎಂದರೆ ಎರಡು ಮೂಳೆಗಳು ಸಂಧಿಸುವ ಜಾಗ, ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಸಂಧಿವಾತದಲ್ಲಿ ಸಂಧುಗಳಲ್ಲಿ ನೋವು, ಬಾವು, ಕೆಂಪುಗಾಗುವುದು, ಬಿಗಿತ ಕೂಡ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆ ಸಂಧಿನ ಚಲನವಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಜ್ವರ ಕೂಡ ಬರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಸಂಧಿವಾತ ಅಥವಾ ಅರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಯಾವುವು ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಆಸ್ಟಿಯೋ ಅರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಅಂದರೆ ಅಸ್ಥಿ ಸಂಧಿವಾತ, ಸಂಧುಗಳಲ್ಲಿನ ಸವಕಳಿಯಿಂದ ಬರುವ ಕಾಯಿಲೆ. ಅದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದೇಹದ ಭಾರ ಬೀಳುವ ಸಂಧುಗಳು ಅಂದರೆ ಮೊಣಕಾಲು, ಪಾದದ ಸಂಧುಗಳು, ಬೆನ್ನಿನ ಸಂಧುಗಳು. ಎರಡನೇದು ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟರಿ ಅರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಅಂದರೆ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರಾಗಿ ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಸಂಧುಗಳ ಮೇಲೆ ಆಗುತ್ತದೆ, ಆಗ ಬರುವ ಕಾಯಿಲೆ. ದೇಹದ ಎರಡು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಂಧುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಧುಗಳಿಗೆ ಹರಡುತ್ತದೆ. ಇದು ವಯಸ್ಕರಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಬರುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆ ಟೈಪ್ 1 ರೊಮಟಾಯ್ಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ರೊಮಟಾಯ್ಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ಟೈಪ್ 2 ಆಂಕ್ಲಾಂಜಿ ಸ್ಪಾಂಡಲೈಟಿಸ್. ಮೂರನೇದು ಇನ್ಫೆಕ್ಟಿವ್ ಅರ್ಥರೈಟಿಸ್, ದೇಹದ ಯಾವುದಾದರೂ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೋಗಗಳಿಂದ ರೋಗ ಆದಾಗ ಅದು ಸಂಧುಗಳಿಗೆ ಹರಡಿ ಅಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಅರ್ಥರೈಟಿಸ್, ಟ್ಯೂಬರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಅರ್ಥರೈಟಿಸ್. ನಾಲ್ಕನೇದು ಮೆಟಾಬೋಲಿಕ್ ಅರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಅಂದರೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಏರುಪೇರಾದಾಗ ಬರುವ ಸಂಧಿವಾತ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಹೆಚ್ಚಳ ಆಗ್ತದೆ, ಗೌಟು ಮತ್ತು ನಾನ್ ಗೌಟು ಇದರ ಉದಾಹರಣೆಗಳು. ಐದನೇದು ನಾನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಅರ್ಥರೈಟಿಸ್. ಆರನೇದು ಇತರೆ ಅಂದರೆ ರೇರ್, ಹಿಮೋಪೆಲಿಕ್ ಅರ್ಥರೈಟಿಸ್, ಸೋರಿಯಾಟಿಕ್ ಅರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಮತ್ತು ಸೈಕೊಲಾಜಿಕಲ್ ಅರ್ಥರೈಟಿಸ್. ಇನ್ನು ಈ ಸಂಧಿವಾತಗಳಿಗೆ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇದೆಯಾ? ಖಂಡಿತ ಇದೆ. ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಇಲ್ಲದ ಸರಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಲಭ್ಯ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತರಲು ಖಂಡಿತ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ವೆಚ್ಚ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ. ಈ ಸಂಧಿವಾತದ ರೋಗಿಯು ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ವೈದ್ಯರಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದರೆ, ಅವರು ರೋಗಿಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಶೇಷ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರೋಗಿಯ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ರೋಗಿಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಇತಿಹಾಸ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಒಳಗೊಂಡಂತಹ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಔಷಧಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಸಂಧಿವಾತಕ್ಕೆ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ಔಷಧಿಗಳೆಂದರೆ ಅರ್ನಿಕ, ಬ್ರಯೋನಿಯಾ, ಕಾಸ್ಟಿಕ ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಅನೇಕ. ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ ಏನೆಂದರೆ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರೋಗಿಯು ಜೀವನ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆ, ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂರಬಾರ್ದು, ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ಸೇವಿಸಬಾರ್ದು ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಅಥವಾ ಅತಿಯಾದ ತೂಕ ಇದ್ದರೆ ಅದರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅತಿ ಅವಶ್ಯ. ಪ್ರತಿದಿನ ನಿಯಮಿತವಾದ ಲಘು ವ್ಯಾಯಾಮ, ಯೋಗ, ಧ್ಯಾನ, ಮುಂಜಾನೆ 30-40 ನಿಮಿಷ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ನಡಿಗೆ, ಸಾಧ್ಯವಾದಲ್ಲಿ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಈಜುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ನಿಮಗೂ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಸಂಧಿವಾತ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನಾದರೂ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮತ್ತು ಭಯ ಪಡದೆ ಹತ್ತಿರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಉಚಿತ ಸಲಹೆ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದು ಗುಣಮುಖರಾಗಿ. ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳೊಂದಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ.
16: ಆಯುಷ್ವಾಣಿ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೇಳಿದಿರಿ. ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಅಥವಾ ಸಂಧಿವಾತಕ್ಕೆ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ತಿಳಿಸಿದವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜಶೇಖರ್ ಸಿ ಹೊಸಮನೆ, ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಯುಷ್ ಅಭಿಯಾನ, ಆಯುಷ್ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಬೆಂಗಳೂರು ವಾಣಿಜ್ಯ ಪ್ರಸಾರ ಕೇಂದ್ರದ ಕೊಡುಗೆ. ಶ್ರೋತೃಗಳೇ, ಗಮನಿಸಿ, ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9:05 ಫಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೂಮೆಂಟ್ ವಿಷಯವಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಿದ್ದು ಯಾದವ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂದರ್ಶನ ಕೇಳುವಿರಿ. ಸಂದರ್ಶಕರು ಅಮೂಲ್ಯ ಎಸ್, ನಿರ್ಮಾಣ ರೋಸ್ಲಿನ್ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ. ಕೇಳಿ 9:05 ಫಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೂಮೆಂಟ್ ವಿಷಯವಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ.
18: ಇದು ಆಕಾಶವಾಣಿ ರಾಯಚೂರು ಎಫ್ಎಂ ಕೇಂದ್ರ. ಸಮಯ 8:30. ಕೇಳಿ ವಿವಿಧ ಕಲಾವಿದರ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ವಚನ ಗಾಯನ.
19: ಅನುಭಾವಿಗೆ ಅಂಗ ಶೃಂಗಾರ ಉಂಟೆ. ವಚನಕಾರರು ಅಮುಗೆ ದಾಯಮ್ಮ, ರಾಗ ಪೀಲು ಮಿಶ್ರಚಾಪತಾಳ, ಹಾಡಿದವರು ಬಿ ಎನ್ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್, ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ ಎಚ್ ಆರ್ ಲೀಲಾವತಿ.

0: ಕೊಡ್ತಾನೆ.
1: ಚೈತ್ರವನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೇಳಿದರೆ ಸಮಯ 2 ಗಂಟೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ವಾರ್ತಾ ಸಂಚಿಕೆಗಳು.
2: Good afternoon. This is Akashwani and I'm Shagun Chopra with the midday news. The headlines. Prime Minister Narendra Modi embarks on a 4-day visit to Uzbekistan and Kyrgyz Republic, says visit will strengthen strategic partnerships and deepen civilizational ties with Central Asia. Death toll in Nepal flash floods rises to 626, over 2,000 people still missing. India steps up humanitarian assistance. US President Donald Trump announces biggest oil deal with Venezuela. Iranian President Masoud Pezeshkian says Tehran is open to negotiations with Washington but remains deeply cautious. National Sports Day being observed today, Prime Minister Modi pays tribute to Major Dhyanchand and salutes dedication of sportspersons. Orange alert issued for heavy to very heavy rainfall in Odisha for next 2 to 3 days. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has embarked for his 2-day visit to Uzbekistan today. The Prime Minister will visit Tashkent at the invitation of the President of Uzbekistan, Mr. Shavkat Mirziyoyev. During the visit, both the leaders will have discussions on the entire gamut of issues of bilateral importance in Tashkent. In his departure statement, Mr. Modi expressed confidence that his visit to Uzbekistan and the Kyrgyz Republic will strengthen India's strategic partnerships in Central Asia and deepen the civilizational connect with the region. He said, in recent years, India-Uzbekistan strategic partnership has seen significant advancement. The Prime Minister said he's looking forward to having discussions with the President of Uzbekistan, Shavkat Mirziyoyev, on further deepening cooperation in trade and investment, digital technology, defense, energy, and on advancing the shared visions of Viksit Bharat and Yangi, Uzbekistan. Mr. Modi said that he will also visit the Shastri Memorial and the Mahatma Gandhi Center at the Tashkent State University of Oriental Studies, which is a tribute to the close cultural and people-to-people ties that bind the two countries. Let's go directly to our correspondent Sushil Chandra Tiwari in Tashkent to get more details about the visit. Sushil, what are the preparations to welcome the Prime Minister and how is the atmosphere there?
3: Well, Shagun, huge preparations are underway to welcome Prime Minister Narendra Modi here. Indian flags are flying everywhere in Tashkent, which is the capital of Uzbekistan. The hotel where the Prime Minister will stay also has the tricolor flag flying everywhere. Later in the evening, the Prime Minister will receive a traditional welcome from both Indian and Uzbek people. We know that the relationship between India and Uzbekistan is very friendly. It goes centuries back. And the people here are fans of Indian films, film stars, Indian songs. And this will definitely be reflected in the welcome ceremony. Shagun?
2: All right, Sushil, thank you. On the second leg of his two-nation visit, Prime Minister Modi will visit the Kyrgyz Republic. In his departure statement, Mr. Modi said that at the invitation of President of the Kyrgyz Republic, Sadir Japarov, he will travel to Bishkek to participate in the 26th SCO summit. Mr. Modi said that he is looking forward to advancing India's vision for the region, anchored in security, connectivity and opportunity, and to working with fellow members for a region free from the scourge of terrorism, separatism and extremism, which continue to strengthen peace and stability in neighborhood and beyond. The Prime Minister said that during his visit to the Kyrgyz Republic, he will also meet President Japarov and also other SCO leaders and will attend the opening ceremony of the 6th World Nomad Games. Well, another question for Sushil. What is the agenda of the visit, Sushil, and the areas in which discussions will take place during the Prime Minister's visit?
3: Shagun, this is Prime Minister Narendra Modi's 4th visit to this Central Asian country. During the visit, Prime Minister will hold delegation-level talks with President Mirziyoyev to further strengthen the strategic partnership between the two countries. The two leaders will review cooperation in trade and investment, defense, digital connectivity, energy, education, and people-to-people domains and set the agenda for the road ahead. Connectivity actually is a major hurdle for the trade between the two countries, and deliberations will take place on this issue also. both leaders will share perspectives on advancing the shared development visions of Viksit Bharat 2047 and Uzbekistan 2030. Shagun?
2: Well, thank you, Sushil, for those details. The death toll from devastating flash floods in Nepal and Tibet has risen to 626 this morning, with over 2,000 people remain missing. Police had recovered 233 bodies in Chitwan, 158 in Nawalparasi East, 48 in Gorkha, 47 in Nawalparasi West, 45 in Dhading, 41 in Nuwakot, 31 in Tanahun and 13 in Rasuwa. Search and rescue operations are underway across the affected districts of the Himalayan nation. Officials said that the police are coordinating with residents and other agencies to locate missing people and assist those stranded by the floods. Rescued people are being taken from high-risk areas to safer locations. Additionally, the search and rescue officials are working to clear the roads blocked by flood debris and landslides to reopen access and facilitate relief operations. The Ministry of External Affairs yesterday said 320 Indian nationals remain uncontactable or are reportedly missing following the flash flood tragedy on Wednesday. External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said around 100 people of Indian origin holding other nationalities also remain uncontactable. Addressing the media in New Delhi, Mr. Jaiswal said 63 Indian nationals working at Trishuli One hydropower project were rescued from the affected area. Mr. Jaiswal said that on the Chinese side, around 400 Indian nationals are safe and in contact with their families. Mr. Jaiswal said the government has set up a control room in the Ministry of External Affairs, which is working round the clock. He said Indian embassies, both in Kathmandu and Beijing, have also set up 24/7 helplines. The facility has been set up to coordinate rescue, relief and tracking efforts for Indian nationals affected by the disaster. Citizens seeking information or assistance can contact the MEA control room via telephone +91 11 2308 8718, +91 11 2308 8719, +91 11 2301 2113, or WhatsApp +91 9968 291988, or email situationroom@mea.gov.in. India has stepped up humanitarian assistance to Nepal affected by flash floods as the third flight carrying 10 tons of humanitarian assistance has departed for Kathmandu last evening. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar yesterday told media that India is supporting Nepal in ongoing relief and rescue efforts. Union Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju will be leading the Indian delegation for the high-level commemorative meeting in Belgrade, Serbia, from 31st of this month till 1st of September. The theme for the meeting is the legacy of non-alignment, lessons for today's world. The External Affairs Ministry in a statement said that the meeting marks the 65th anniversary of the first conference of head of state or head of government of the non-aligned movement. This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts, and for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. US President Donald Trump has announced the biggest oil deal with Venezuela. The landmark agreement with Venezuela will give the US majority control over more than 65 billion barrels of proven crude oil reserves. He said the agreement was secured at no cost to the American taxpayer and will more than double total American oil reserves. The U.S. administration claims the massive influx to the U.S. oil supply will drive down domestic gasoline prices long-term while putting Venezuela's economy on a path toward economic recovery. The announcement comes following months of intense U.S. diplomatic pressure, sanctions enforcement and direct oversight of Venezuelan oil exports. Iranian President Masoud Pezeshkian has said that Tehran is open to negotiations with the United States but remains cautious about Washington. He said Iran would honor its commitments if the U.S. also upheld its side of the agreement. In a TV interview, Pezeshkian said diplomatic efforts could focus on reviving the June peace memorandum of understanding. He noted that Iran had exported nearly 90 million barrels of oil while the agreement was being implemented. Pezeshkian's comments came as Iran continues to grapple with economic pressures at home. Prime Minister Narendra Modi will share his thoughts with the people of the country and abroad in Mann Ki Baat program on Akashwani at 11 a.m. tomorrow. It will be the 137th episode of the monthly radio program. The program will be broadcast across the entire Akashwani and Doordarshan network, the AIR news website, and the news on AIR mobile app. It will also be live streamed on the YouTube channels of AIR News, DD News, the PMO and the Ministry of Information and Broadcasting. Akashwani will broadcast the program in regional languages immediately after the Hindi broadcast. The Central Warehousing Corporation, or CWC, has successfully dispatched the second Onion Express of the season from Nashik, Maharashtra to Chennai, Tamil Nadu. In a social media post, CWC said the initiative will further strengthen the supply chain and ensure the timely availability of onions across markets. National Sports Day is being celebrated across the country today to commemorate the birth anniversary of one of India's greatest sporting icons, Major Dhyanchand. The day celebrates India's rich sporting heritage and encourages people to make sports a regular part of their daily lives. More from our correspondent.
3: National Sports Day 2026 is being observed as a three-day nationwide campaign under the pillars of tribute, play and move. This year, National Sports Day is being celebrated under the call Ek Ghanta Khel Ke Maidan Mein. Various in Delhi Union Ministers Dr. Mansukh Mandviya and Arjun Ram Meghwal participated in a cricket match under the campaign. Talking to media, Dr. Mandviya called upon people to spend at least 1 hour on the sports field to remain fit and healthy.
0: Aaj National Sports Day ke avsar par.
4: The occasion of National Sports Day, a one-hour sports activity has been organized across the country to promote the Fit India movement. Since this morning, I have been receiving information that lakhs of young people across the country have come out to play for an hour in playgrounds and in every street. I am happy to see that the country is changing under the leadership of Prime Minister Narendra Modi.
0: मुझे खुशी है मोदी जी के नेतृत्व में देश बदल रहा.
3: Mr. Meghwal said he plays badminton every day. He said sports help people remain healthy and fit and also help in keeping stress away. The government has been making sustained investments in India's sporting ecosystem with the results increasingly visible on the global stage. India's performances at major international sporting events reflect the country's growing strength across Olympic, Paralympic and multi-sport disciplines. India's Olympic journey has witnessed a significant transformation in the recent years. The country won 2 medals at Rio 2016, 7 at Tokyo 2020 and 6 medals at Paris 2024. India's performance at the Paralympic Games has also improved remarkably. The medal tally rose from 4 at 20 at Rio 2016 to 19 at Tokyo 2020. At Paris 2024, India recorded its best ever Paralympic performance with 29 medals. Saklan Akhtar for Akashwani News, Delhi.
2: Prime Minister Narendra Modi today paid homage to the Indian hockey legend Major Dhyanchand on the occasion of National Sports Day. In a social media post, Mr. Modi said Major Dhyanchand's brilliance in Indian hockey continues to inspire generations. Union Minister for Finance and Corporate Affairs Nirmala Sitharaman today highlighted India's broad-based growth, reform momentum and expanding opportunities for long-term investment in Chicago. The finance minister today addressed a high-level business roundtable with leading investors and business leaders. A key focus of the meeting was manufacture in India, for India and for the world, with opportunities across manufacturing, AI and digital, financial services, infrastructure, food processing, defense and advanced technologies. The India Meteorological Department, IMD, has issued an orange color warning for heavy to very heavy rainfall over Odisha till Monday. Heavy rainfall is also likely to hit Bihar, Gangetic West Bengal, Jharkhand, Madhya Pradesh, Chhattisgarh and parts of northeastern states for the next 2 to 3 days. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi embarks on 4-day visit to Uzbekistan and Kyrgyz Republic, says visit will strengthen strategic partnerships and deepen civilizational ties with Central Asia. Death toll in Nepal flash floods rises to 626, over 2,000 people still missing. India steps up humanitarian assistance. US President Donald Trump announces biggest oil deal with Venezuela. Iranian President Masoud Pezeshkian says Tehran is open to negotiations with Washington but remains deeply cautious. National Sports Day being observed today, Prime Minister Modi pays tribute to Major Dhyanchand and salutes dedication of sports persons. Orange alert issued for heavy to very heavy rainfall in Odisha, for next 2 to 3 days. And with that, we end the midday news.
5: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना। कहा, इस यात्रा से मध्य एशिया के साथ रणनीतिक साझेदारी मजबूत होगी और सभ्यतागत जुड़ाव और गहरा होगा। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ में मरने वालों की संख्या 626 हुई। 2000 से अधिक लोग अब भी लापता। भारत ने मानवीय सहायता बढ़ाई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के साथ अब तक के सबसे बड़े तेल समझौते की घोषणा की। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजश्कियान ने कहा, ईरान अमेरिका के साथ बातचीत के लिए तैयार, लेकिन अत्यधिक सतर्क भी है। आज राष्ट्रीय खेल दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि अर्पित की और खिलाड़ियों के समर्पण को सराहा। और ओडिशा में अगले 2 से 3 दिनों के लिए मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह उज्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य की 4 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए। श्री मोदी ने रवाना होने से पहले कहा कि उनकी उज्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य की यात्रा से मध्य एशिया में भारत की रणनीतिक साझेदारियां मजबूत होंगी तथा इस क्षेत्र के साथ सभ्यतागत जुड़ाव और गहरा होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेफ के साथ व्यापार और निवेश, डिजिटल संपर्क, रक्षा तथा ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग और मजबूत करने के साथ साथ विकसित भारत और यांगी उज्बेकिस्तान के साझा दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। और अब बात करते हैं ताशकंद में मौजूद हमारे संवाददाता सुशील चंद तिवारी से। जी सुशील, ताशकंद पहुंचने पर प्रधानमंत्री के स्वागत की क्या तैयारियां हैं वहां पर और लोगों में कितना उत्साह देख रहे हैं आप?
3: विशाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत की ताशकंद में जबरदस्त तैयारियां हो रही हैं। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में जगह जगह पर भारतीय झंडे लहरा रहे हैं। जिस होटल में प्रधानमंत्री रुकेंगे वहां भी चारों तरफ तिरंगा ही नजर आ रहा है। विशाल, देर शाम प्रधानमंत्री का भारतीय और उज्बेकिस्तान के लोगों की ओर से पारंपरिक अंदाज में स्वागत भी होगा। हम जानते हैं कि भारत और उज्बेकिस्तान के बीच रिश्ते बहुत दोस्ताना हैं और यहाँ के लोग जो हैं वो भारतीय फिल्मों, गानों और फिल्मी सितारों के दीवाने हैं, तो उसकी एक झलक भी यहाँ के स्वागत में जरूर नजर आएगी। विशाल,
5: इस यात्रा के दौरान किन प्रमुख विषयों पर चर्चा होने की संभावना है वहां पर?
3: विशाल, प्रधानमंत्री की जो ये मध्य एशियाई देश उज्बेकिस्तान की यात्रा है, ये उनकी चौथी यात्रा है और इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव के बीच तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी जिससे दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ सके। लेकिन जो प्रमुख मुद्दे हैं उनमें निवेश बढ़ाने, व्यापार को दोगुना करने, रक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी, ऊर्जा, शिक्षा और लोगों के बीच आपसी सहयोग और संवाद बढ़ाने को लेकर खास बातचीत होगी। विशाल, दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी भी एक बहुत बड़ी अड़चन है व्यापार को आगे बढ़ाने में, तो इस विषय पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। विशाल,
5: धन्यवाद सुशील इस जानकारी के लिए। उज्बेकिस्तान में भारत की राजदूत स्मिता पंत ने आकाशवाणी समाचार के साथ विशेष साक्षात्कार में कहा कि उज्बेकिस्तान में प्राकृतिक संसाधनों का समृद्ध भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की ताशकंद यात्रा के दौरान निवेश और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर भी चर्चा होने की संभावना है।
6: रिलेशनशिप ऑलरेडी बहुत अपवर्ड ट्रैजेक्टरी में है। 2011 में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोर्ज हुई थी, उसके बाद 2015 में प्रधानमंत्री जी का पहला दौरा हुआ था। 2026 तक बहुत सारे एरियाज में हम लोग फॉरवर्ड मूवमेंट कर चुके हैं, चाहे आप ट्रेड की बात करें, इन्वेस्टमेंट की बात करें, डेवलपमेंट कोऑपरेशन की बात करें, डिफेंस कोऑपरेशन की बात करें, ट्रेड में ही करीबन 300% इंक्रीज हुई है 2015 से।
5: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज शिकागो में भारत की व्यापक विकास दर, सुधारों की गति और दीर्घकालिक निवेश के बढ़ते अवसरों पर चर्चा की। उन्होंने प्रमुख निवेशकों और व्यापारिक नेताओं के साथ एक उच्च स्तरीय व्यापार गोलमेज सम्मेलन को संबोधित किया। बैठक में भारत में विनिर्माण, भारत और विश्व के लिए विषय पर चर्चा हुई। इसमें विनिर्माण, एआई और डिजिटल प्रौद्योगिकी, वित्तीय सेवाएं, अवसंरचना, खाद्य प्रसंस्करण, रक्षा और उन्नत प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में उपलब्ध अवसर शामिल हैं। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या 626 हो गई है, जबकि 2000 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। बचाए गए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। इस बीच भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल को मानवीय सहायता तेज कर दी है। मानवीय सहायता सामग्री के साथ तीसरा विमान कल शाम काठमांडू पहुंचा। विदेश मंत्रालय ने बताया कि 320 भारतीय नागरिकों से अभी तक संपर्क नहीं हो पाया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में कहा कि भारतीय मूल के करीब 100 अन्य लोगों से भी संपर्क नहीं हो पाया है। एक रिपोर्ट।
7: श्री जायसवाल ने बताया कि त्रिशूली वन जल विद्युत परियोजना में कार्यरत 63 भारतीय नागरिकों को प्रभावित क्षेत्र से सुरक्षित निकाल लिया गया है। उन्होंने कहा कि चीन की ओर करीब 400 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और अपने परिवारों के संपर्क में हैं। उन्होंने बताया कि एक नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया गया है। काठमांडू और बीजिंग स्थित भारतीय दूतावासों ने भी 24 घंटे हेल्पलाइन शुरू की है। नियंत्रण कक्ष के टेलीफोन नंबर है 011-230-88-718 और 011-230-1213। व्हाट्सएप नंबर है 9968291988 और ईमेल है situationroom@mea.gov.in। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास के आपातकालीन नंबर है +9779851316807+9779701075000 और +9798103261117। बीजिंग स्थित भारतीय दूतावास का नंबर है +86185142849005। समाचार कक्ष से सौरभ अग्रवाल।
5: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है।
8: अपडेट रहे, आगे रहे। @AIRNewsHindi और Instagram पर AIR News Alerts को फॉलो करें।
5: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के साथ अब तक के सबसे बड़े तेल समझौते की घोषणा की है। वेनेजुएला के साथ हुए इस समझौते से अमेरिका को 65 अरब बैरल से अधिक कच्चे तेल के भंडार पर नियंत्रण हासिल हो जाएगा। एक रिपोर्ट।
9: राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि ये समझौता अमेरिका करदाताओं पर बिना किसी बोझ के हासिल किया गया है और इससे अमेरिका के कुल तेल भंडार दोगुने से भी अधिक हो जाएंगे। अमेरिकी प्रशासन का दावा है कि तेल आपूर्ति में इस वृद्धि से घरेलू गैसोलीन की कीमतें कम होंगी और वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था को आर्थिक सुधार में मदद मिलेगी। ये घोषणा वेनेजुएला के तेल निर्यात पर महीनों से चल रहे अमेरिकी राजनयिक दबाव प्रतिबंधों के प्रवर्तन के बाद हुई है। ये समझौता ट्रंप के आदेश पर किए गए सैन्य अभियान के 9 महीने बाद हुआ है, जिसमें वेनेजुएला के नेता निकोलस मादुरो को गिरफ्तार किया गया था और उन पर मादक पदार्थों की तस्करी के आरोप लगाकर उन्हें अमेरिका को सौंप दिया गया था। समाचार कक्ष से भूपेंद्र सिंह।
5: ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजश्कियान ने कहा है कि तेहरान अमेरिका के साथ बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन अमेरिका को लेकर अत्यधिक सतर्क भी है। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका समझौते की शर्तों का पालन करता है तो ईरान भी अपनी प्रतिबद्धताएं पूरी करेगा। एक रिपोर्ट।
10: श्री पेजश्कियान ने एक टीवी साक्षात्कार में कहा कि राजनयिक प्रयासों का केंद्र बिंदु जून में हुए शांति समझौते को फिर से लागू करना हो सकता है। उन्होंने कहा कि समझौता लागू रहने के दौरान ईरान ने करीब 9 करोड़ बैरल तेल का निर्यात किया था। श्री पेजश्कियान की ये टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब ईरान घरेलू स्तर पर आर्थिक दबावों का सामना कर रहा है। अमरीका और ईरान ने 18 जून को क्षेत्र में लेबनान सहित सभी मोर्चों पर युद्ध समाप्ति का समझौता किया था, जिसकी समय सीमा 17 अगस्त को समाप्त हो गई। इन वार्ताओं का उद्देश्य अंतिम समझौते तक पहुंचना था, लेकिन पिछले महीने तनाव बढ़ने के बाद इनका भविष्य अनिश्चित बना हुआ है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
5: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू 31 अगस्त से सर्बिया के बेलग्रेड में आयोजित होने वाली उच्च स्तरीय स्मृति बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। बैठक का विषय है गुट निरपेक्षता की विरासत, आज की दुनिया के लिए सबक। सरकार ने चीनी की समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा मासिक कोटा प्रणाली के स्थान पर अगले महीने से पखवाड़े के आधार पर चीनी आवंटन प्रणाली शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत चीनी मिलों को पहले सप्ताह में कम से कम 40% आवंटन और शेष मात्रा अगले सप्ताह में बेचनी होगी। केंद्रीय भंडारण निगम CWC ने महाराष्ट्र के नासिक से तमिलनाडु के चेन्नई तक इस सीजन की दूसरी प्याज एक्सप्रेस रवाना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में CWC ने कहा कि इस पहल से आपूर्ति श्रृंखला और मजबूत होगी और सभी बाजारों में प्याज की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड IGL ने CNG की कीमत में 3.89 रुपए प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की है। नई दरें आज से लागू हो गई हैं। कीमत बढ़ने के बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में CNG अब 86.98 रुपए प्रति किलोग्राम मिलेगी। गुरुग्राम में CNG की कीमत 92.01 रुपए और गाजियाबाद तथा नोएडा में 95.59 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 137वीं कड़ी होगी। सरकार ने व्हाट्सएप की निगरानी के लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों से संबंधित एक फर्जी दावे का खंडन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि सरकार ने ऐसे कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं। ये आकाशवाणी है। भारतीय हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में आज राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है।
11: राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 को 3 दिवसीय राष्ट्रव्यापी अभियान के रूप में मनाया जा रहा है। इस अभियान के 3 प्रमुख स्तंभ हैं ट्रिब्यूट, प्ले एंड मूव। इस वर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस 1 घंटा खेल के मैदान में के आह्वान के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न खेल गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इस अभियान के तहत दिल्ली में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया और अर्जुन राम मेघवाल ने क्रिकेट खेला। मीडिया से बातचीत में डॉक्टर मांडविया ने लोगों से स्वस्थ और फिट रहने के लिए हर सप्ताह कम से कम 1 घंटा खेल के मैदान में बिताने का आह्वान किया।
0: आज नेशनल स्पोर्ट्स डे के अवसर पर सारे देश में फिट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए 1 घंटे खेल के मैदान में कार्यक्रम दिया है। मुझे खुशी है, मोदी जी के नेतृत्व में देश बदल रहा, देश आगे बढ़ रहा है, नया भारत का निर्माण हो रहा।
11: श्री मेघवाल ने कहा कि खेल लोगों को स्वस्थ और फिट रखने के साथ साथ तनाव से दूर रखने में भी मदद करता है। सरकार द्वारा खेल पारिस्थितिकी तंत्र में लगातार निवेश किया जा रहा है, जिसके परिणाम वैश्विक मंच पर भी दिखाई दे रहे हैं। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में भारत का प्रदर्शन, ओलंपिक, पैरालंपिक और बहु खेल प्रतियोगिताओं में देश की बढ़ती ताकत को दर्शाता है। खेलो इंडिया, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम और खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन जैसी पहले देश के खेल पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत कर रही है और खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करने में मदद कर रही है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
5: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री ने सभी खेल प्रेमियों को उनके समर्पण, जुनून और दृढ़ संकल्प देश को गौरवान्वित करता है। मौसम विभाग ने ओडिशा में सोमवार तक मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में अगले 5 दिनों तक बारिश और गरज के साथ तूफान जारी रहने की संभावना है। उधर बिहार, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्वी राज्यों के कुछ हिस्सों में भी अगले 2 से 3 दिनों तक तेज बारिश की संभावना है। इस बीच मौसम विभाग ने कहा है कि दिल्ली में आज आसमान में बादल छाए रहेंगे जबकि बारिश नहीं होगी। विभाग ने यह भी बताया कि राष्ट्रीय राजधानी में अगले 7 दिनों तक अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना। कहा, इस यात्रा से मध्य एशिया के साथ रणनीतिक साझेदारी मजबूत होगी और सभ्यतागत जुड़ाव और गहरा होगा। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ में मरने वालों की संख्या 626 हुई। 2000 से अधिक लोग अब भी लापता। भारत ने मानवीय सहायता बढ़ाई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के साथ अब तक के सबसे बड़े तेल समझौते की घोषणा की। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजश्कियान ने कहा, ईरान अमेरिका के साथ बातचीत के लिए तैयार लेकिन अत्यधिक सतर्क भी है। आज राष्ट्रीय खेल दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि अर्पित की और खिलाड़ियों के समर्पण को सराहा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: बरसती धारा।
1: अथ मराठी भाषा न्यूज ऑन AIR ऐप मध्ये उपलब्ध आहे।
2: और बिहार के सभी भाषा के कार्यक्रम को सुनो।
3: हिंदी भाषा के कार्यक्रम, संगीत और समाचार सुनने के लिए डाउनलोड करें न्यूज ऑन AIR ऐप।
1: रागम 24x7 DTH वाहिनी, FM रेनबो, विविध भारती मत्तु भारतद एल्ला आकाशवाणी केंद्र मत्तु 8 दूरदर्शनद चानल्गळु न्यूज ऑन AIR नल्ली लभ्य। इंदे प्रसार भारती न्यूज ऑन AIR ऐप न प्ले स्टोर निंद डाउनलोड माडि जगत्तिनाद्यंत एल्लेंदरल्ली निम्म भाषेय कार्यक्रम केळि।

तुझ पे कोई गम की आज आन नहीं दूं, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
2: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
3: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
4: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
3: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
4: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
3: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत और उज्बेकिस्तान के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए दो दिन के दौरे पर ताशकंद पहुंचे। नेपाल में बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 669 हुई। 287 भारतीय नागरिकों सहित 2000 से अधिक लोग अब भी लापता। नेपाल ने भारत के राहत प्रयासों की सराहना की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अमेरिका के शिकागो बिजनेस राउंड टेबल सम्मेलन में भारत के विशाल बाजार आकार और दीर्घकालिक निवेश क्षमता को रेखांकित किया। इस वर्ष जुलाई तक 115 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि को प्रति बूंद अधिक फसल लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत लाया गया। यूक्रेन के बुचा जिले पर रूस के ड्रोन हमले में 37 लोग मारे गए और ओडिशा में सोमवार तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। बिहार, पश्चिम बंगाल के गांगे क्षेत्र, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में भी तेज बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिन की उज्बेकिस्तान की यात्रा पर आज शाम राजधानी ताशकंद पहुंचे। राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव ने उनका स्वागत किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी के स्वागत के लिए ताशकंद शहर में विशेष प्रबंध किए गए हैं।
1: पूरा ताशकंद शहर भारतीय झंडों और होर्डिंग से सजा हुआ है। हर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चौथी यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव सदियों पुराने आपसी संबंधों को और मजबूत करने पर विचार विमर्श करेंगे। दोनों नेता राष्ट्रपति भवन में व्यापार और निवेश, रक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी, ऊर्जा, शिक्षा और जनसंबंधों के क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा करेंगे। वे विकसित भारत 2047 और उज्बेकिस्तान 2030 के साझा विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने पर भी अपने विचार साझा करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
0: उज्बेकिस्तान में भारत की राजदूत स्मिता पंत ने आकाशवाणी समाचार के साथ विशेष साक्षात्कार में कहा कि उज्बेकिस्तान में प्राकृतिक संसाधनों का समृद्ध भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की ताशकंद यात्रा के दौरान निवेश और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर भी चर्चा की संभावना है।
2: रिलेशनशिप ऑलरेडी बहुत अपवर्ड ट्रैजेक्टरी में है। 2011 में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोर्ज हुई थी, उसके बाद 2015 में प्रधानमंत्री जी का पहला दौरा हुआ था। 2026 तक बहुत सारे एरियाज में हम लोग फॉरवर्ड मूवमेंट कर चुके हैं, चाहे आप ट्रेड की बात करें, इन्वेस्टमेंट की बात करें, डेवलपमेंट कोऑपरेशन की बात करें, डिफेंस कोऑपरेशन की बात करें। ट्रेड में ही करीबन 300% इंक्रीज हुई है 2015 से।
0: उज्बेकिस्तान के बाद श्री मोदी किर्गिस्तान की दो दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादोर जापारोव के निमंत्रण पर बिश्केक में 26वें शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। नेपाल में आई भीषण बाढ़ में मृतकों की संख्या 669 हो गई है और 2000 से अधिक लोग लापता है। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। बचाए गए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। बंद सड़कों को साफ करने का काम भी तेजी से चल रहा है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल में अब तक 88 भारतीय नागरिकों को बचाया जा चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि 287 भारतीय नागरिक लापता हैं। उन्होंने कहा कि 128 भारतीय मूल के लोग भी लापता हैं। रसुवा स्थित एक जल विद्युत परियोजना से 4 भारतीय नागरिकों को बचाया गया। आज 120 भारतीय नागरिक चीन से नेपाल में दाखिल हुए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: नेपाल में बुधवार को आई भीषण बाढ़ की त्रासदी के बाद से वहां फंसे भारतीय नागरिकों को खोजने और बचाने के लिए भारत ने अपने प्रयास तेज कर दिए हैं। भारत की 6 फोरेंसिक विशेषज्ञ टीम मृत लोगों के शवों की पहचान करने के लिए डीएनए सैंपल की जांच में मदद करेंगी। इसके अलावा सुरंग में बचाव कार्य की जांच करने वाली एक विशेष तकनीकी टीम कल काठमांडू पहुंची, जिसने प्रभावित क्षेत्र में सुरंग से लोगों को बचाने के काम में सहायता शुरू कर दी है। वहीं विदेश मंत्रालय ने बचाव, राहत और लापता भारतीय नागरिकों की जानकारी जुटाने के लिए 24 घंटे चलने वाला कंट्रोल रूम बनाया है। काठमांडू और बीजिंग में स्थित भारतीय दूतावासों ने भी 24 घंटे की हेल्पलाइन शुरू की है, ताकि बाढ़ से प्रभावित भारतीय नागरिकों की मदद की जा सके। इसके अलावा भारत ने नेपाल में चल रहे बचाव और राहत कार्यों में मदद के लिए 57 टन से अधिक आपातकालीन राहत सामग्री भेजी है। दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: नेपाल सरकार ने संकट की इस घड़ी में भारत की तत्काल मदद की सराहना की है। नेपाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को असाधारण रूप से उदार बताया है। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने भी भारत की सहायता के लिए आभार व्यक्त किया। वित्त मंत्री स्वर्णिम वागले ने कहा कि बाढ़ के बाद भारत से राहत सामग्री भेजी गई है और भारत ने पुनर्निर्माण के लिए सहायता प्रदान करने का संकेत दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत नेपाल को लगातार सहायता भेज रहा है।
4: नेपाल में जो क्राइसिस पैदा हुई है उससे केवल नेपाल ही चिंतित नहीं है, भारत भी चिंतित है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा है कि जितनी भी सहायता की आवश्यकता होगी या जो भी सहायता आवश्यक होगी वह सब भारत उपलब्ध कराने के लिए तैयार है।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वैश्विक कंपनियों को अपनी आपूर्ति श्रृंखला और पूंजी आवंटन का फिर आकलन करना चाहिए, क्योंकि भारत न केवल विशाल बाजार उपलब्ध कराता है बल्कि दीर्घकालीन निवेश और संचालन मंच का भी आधार है। अमेरिका के शिकागो में प्रमुख निवेशकों और उद्योगपतियों के साथ एक उच्च स्तरीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि भारत में निवेश का तात्पर्य व्यापक बाजार, सतत आर्थिक विकास, कौशल युक्त प्रतिभा, विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और एक दशक के सुधार से है। उन्होंने कहा कि देश का अगला आर्थिक विकास एआई, इंजीनियरिंग, एनालिटिक्स, उत्पाद विकास, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स में निहित है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए @AIRNewsHindi को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़ें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि इस वर्ष जुलाई तक प्रति बूंद अधिक फसल योजना के अंतर्गत 115 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को लघु सिंचाई प्रणाली में लाया गया है।
6: योजना का उद्देश्य खेत स्तर पर पानी के प्रयोग में दक्षता लाना और उसमें सुधार करना है। ये योजना जनवरी 2006 में केंद्र सरकार ने लघु सिंचाई के लिए शुरू की थी। वर्ष 2015-16 से 2021-22 तक इसका आधिकारिक नाम प्रति बूंद अधिक फसल किया गया और इसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के प्रमुख घटक के रूप में लागू किया गया। जना के अंतर्गत केंद्र सरकार 5 हेक्टेयर तक लाभार्थी को लघु सिंचाई प्रणाली लगाने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। छोटे और सीमांत किसानों को 55% और अन्य किसानों को 45% तक वित्तीय सहायता मिलती है। केंद्र सरकार ने पिछले 3 सालों में 8,123 करोड़ रुपए से अधिक की राशि इस योजना में जारी की है। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत न केवल एक प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है बल्कि अपनी सभ्यतागत विरासत, संस्कृति और क्षमताओं में दृढ़ विश्वास रखने वाला राष्ट्र भी है। लखनऊ में एक कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि आज जब भारत बोलता है तो दुनिया सुनती है। उन्होंने कहा कि भारत में शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास हुआ है।
7: पिछले 12 वर्षों में शिक्षा की क्वालिटी, एसेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी बढ़ी। भारत का रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर पहले के कंपैरिजन में 2 गुना हो गया। 34 ईयर्स में पहली बार हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाई है। शिक्षा के क्षेत्र में हुए बदलावों और अच्छी पॉलिसीज का ये परिणाम है। आज देश के नौजवान स्टार्टअप खड़े कर रहे हैं, यूनिकॉर्न कंपनियां बना रहे हैं। 2015 में हम ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 81वें स्थान पर, हमने अब 38वें स्थान पर अपनी पहुंच हासिल कर ली है।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज बेंगलुरु में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री रामकृष्ण हेगड़े के शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया। उपराष्ट्रपति ने उन्हें एक ऐसा राजनेता बताया जो विकेंद्रीकरण, त्रिस्तरीय शासन, सुदृढ़ संघवाद और लोकायुक्त की मजबूती के लिए खड़ा रहा। उन्होंने कहा कि रामकृष्ण हेगड़े का कार्यालय विश्वास का प्रतीक था। भारतीय जनता पार्टी ने आज कांग्रेस पार्टी पर दलित समुदाय को राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। भाजपा के प्रवक्ता डॉक्टर गुरु प्रकाश पासवान ने नई दिल्ली में कहा कि कांग्रेस का दलित समुदाय को अपमानित करने का इतिहास रहा है। उन्होंने कहा कि इसके विपरीत नरेंद्र मोदी सरकार ने बीआर अंबेडकर की विरासत का सम्मान किया और उनसे जुड़े स्थलों को तीर्थ स्थल का दर्जा दिया है। पार्टी के एक अन्य प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर राजनीतिक लाभ के लिए हिंदुओं को बांटने का आरोप लगाया। उन्होंने अनुच्छेद 370 का उल्लेख किया और कहा कि इसके प्रावधान जम्मू कश्मीर में वाल्मीकि समुदाय के साथ भेदभाव करते थे। इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दलित समुदाय के खिलाफ भेदभाव का मुद्दा उठाया था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप News on AIR पर भी उपलब्ध हैं।
5: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए X@AIRNews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: ये आकाशवाणी है। यूक्रेन की राजधानी कीव के पास बुचा जिले में आज हुए एक भीषण रूसी ड्रोन हमले में 37 लोगों की मौत हो गई। हमले में 50 आवासीय इमारतें क्षतिग्रस्त हुई और कई घर और एक रेस्तरां भी भीषण आग की चपेट में आ गए। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि बुजुर्गों और विकलांगों के लिए बने एक देखभाल केंद्र और आवासीय इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर भारतीय हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री मोदी ने कहा कि भारतीय हॉकी की श्रेष्ठतम प्रतिभा के रूप में मेजर ध्यानचंद आज भी पीढ़ियों को प्रेरित करते हैं। श्री मांडविया ने लोगों से स्वस्थ और फिट रहने के लिए हर सप्ताह कम से कम एक घंटा खेल के मैदान में बिताने का आह्वान किया।
8: आज नेशनल स्पोर्ट्स डे के अवसर पर सारे देश में फिट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए एक घंटे खेल के मैदान में कार्यक्रम दिया है। मुझे खुशी है, मोदी जी के नेतृत्व में देश बदल रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, नया भारत का निर्माण हो रहा है।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि सरकार खेल और खिलाड़ियों के विकास के लिए लगातार काम कर रही है।
9: देश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार निवेश कर रही है, जिसका असर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दिखाई दे रहा है। ओलंपिक, पैरा ओलंपिक और अन्य बड़ी खेल प्रतियोगिताओं में भारत का बेहतर प्रदर्शन दिखाता है कि देश खेलों के क्षेत्र में लगातार मजबूत हो रहा है। केंद्रीय बजट 2026-27 में खेल मंत्रालय के लिए 4400 करोड़ रुपए से अधिक का आवंटन किया गया है। भारत ने रियो 2016 में 2 पदक, टोक्यो 2020 में 7 पदक और पेरिस 2024 में 6 पदक जीते थे। वहीं पैरा ओलंपिक खेलों में भी भारत के प्रदर्शन में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। पदकों की संख्या रियो 2016 में 4 से बढ़कर पेरिस 2024 में 29 हो गई है। इसके अलावा एशियाई खेलों में भी भारत का प्रदर्शन लगातार बेहतर हुआ है। देश ने 2014 के एशियाई खेलों में 57 पदक जीते थे, वहीं 2023 में भारत ने रिकॉर्ड 107 पदक जीतकर इतिहास रचा। सकलेन अख्तर के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने आज संयुक्त सीएसआईआर यूजीसी नेट परीक्षा के सभी 5 विषयों की अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी है। परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार अपने पहचान पत्रों का उपयोग करके लॉगिन कर अपने विषय से संबंधित अंतिम उत्तर कुंजी देख सकते हैं। पंजाब सरकार ने 27 अगस्त को महाहड़ताल के अंतर्गत सामूहिक आकस्मिक अवकाश पर जाने वाले लाखों कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। सरकार ने सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागों के प्रमुखों को अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने वाले सभी कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के आदेश दिए हैं। मौसम विभाग ने ओडिशा में अगले 2 दिनों के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के गंगा के तटवर्ती क्षेत्र में कल मूसलाधार बारिश की चेतावनी है। इसके अलावा बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश